0: मैनेजर साहब, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: जब तक तुम्हारा 2 साल का एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तुम्हें अपना पासपोर्ट मिलेगा और ना तुम अपने देश जा सकते हो।
0: किस बात का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में तो ये भी लिखा था मुझे हर महीने मेरी सैलरी मिलेगी, नहीं मिली 8 महीनों से, और अब चाहिए भी नहीं मेरे को मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: तुझे एक बार कहा समझ नहीं आता, जब तक तेरा 2 साल का एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तू अपने घर जाएगा और ना अपने देश। अब निकल यहाँ से, चुपचाप काम कर अपना।
0: घर नहीं जा सकता? हे बाबा श्याम, अब तू ही धनी है।
1: तुम्हारा बाबा श्याम धनी है यहाँ से 7 समुद्र पार। यहाँ पे तुम्हारा धनी वही है जिसने तुम्हें वीजा दिया और जिसके पास तुम्हारा पासपोर्ट है।

सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

रगली तू धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पाव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

चंदन उग्यो हरिये बाग में, खुशी भई वनराय। और बांस उग्यो डर डूंग रहे थरक रही वनराय। जहां एक तरफ चंदन के उगने से वन में चारों ओर खुशी और आनंद का माहौल हो गया कि अपनी शीतल छाया के साथ साथ दिव्य सुगंध से पूरे वन को महकाएगा। वहीं दूसरी ओर बांस के उगने से वन में चारों ओर उदासी छा गई कि एक दिन ये नुगरा बांस खुद जलेगा और पूरे वन को जला देगा। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, जिसका डर था वही हुआ, उसी बांस के कारण जंगल में आग लगी।

लो लागी डावे डूंगरे मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखेरू सब उड़ गया और हंसलो बैठो डाल। जंगल में चारों तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई, सारे जीव जंतु पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। पर एक हंस आग की लपटों को चीरता हुआ चंदन की डाली पर बैठ गया। मृत्यु से बिना डरे भाव के साथ अपनी डाली से लिपटा हुआ देख चंदन हंस से बोल पड़ा, कहा, हे हंसराज, मेरी तो जड़ें बड़ी पतालों में गहरी हैं, इसलिए इस आग में जलने को विवश हूं, पर तुम्हें तो भगवान ने पंख दिए हैं, अपने इन पंखों का इस्तेमाल कर और इस जंगल और आग को छोड़कर अपनी जान बचाकर चला जा। पर हंस आंखों में आंसू लेकर बोला, हे चंदन, तेरे फूल खाए, तेरे पत्ते खाए, तेरी डाली डाली खेले, तेरी छाया में अपना जीवन बिताया, और आज इन आग की लपटों को देखकर, आज इस मृत्यु के भय से अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो मेरा प्रेम कैसा।

फल खाया पान पिरो लिया और रम्या डालो डाल, थे तो जड़ो और मैं क्यों उबरा, जीणो है कितना साल। हंस रोता हुआ चंदन से बोला है, चंदन मेरे जीवन पर तेरे बड़े उपकार है और आज इस आग की लपटों और इस संकट की घड़ी को देखकर मैं अगर तुझे छोड़ के चला जाऊं तो मेरी मित्रता कैसी और मेरा प्रेम कैसा। एक तरफ हंस और चंदन का टूट प्रेम देखकर भगवान की आंखों में आंसू टपक पड़े और इस प्रेम के लिए भगवान ने उस जंगल में इतनी भयंकर बारिश कर दी कि चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया और आग की लपटें भी बुझ गई। साहेब कबीरदास जी ने कहा,

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की घर पर रेडियो डीएस रेडियो डीएस।
3: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का। मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
5: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
6: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गंगापुर सिटी नमस्कार। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे थोड़ी देर में आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइस का। तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ी को आपकी खत्म करते हैं और लेकर चलते हैं आपको आपके मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइस में।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
2: सर सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हैं।
1: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
2: थम थम के यूजर, थम थम के बरस।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश पर एक बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
2: शुक्रिया सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो, हेलो, सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल, नाम बताएं सर आपका।
1: क्या हाल है जी?
2: बस बहुत अच्छे है सर, आपका आशीर्वाद। नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम है जी प्रगट सिंह ढिल्लों, पिंड ढिल्लवां, जिला बरनाला जी, पंजाब।
2: पंजाब से बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: गाना सुनना है जी, पंजाबी गीत सुनना है जी। मैं पंजाबी मिल जाएगा जी?
2: जी बिल्कुल मिलेगा। आपका गाने का बोल बताएं।
1: गाने का बोल है दुनिया चौंक दिनों का मेला।
2: दुनिया चार दिनों का मेला?
1: चौंक दिनों का, हाँ जी, चार दिन का देख लो, चार दिन में निकल सकता है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ जी, मैं कमेंट जी, मैनू ना जगजीत मुट्टू ने जुड़े जी अपने साथ
2: जी, वो बहुत अच्छे नियमित श्रोता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप जुड़े।
1: ओ, मेरा भी बहुत आड़ी है जी, वो असी रोज कच्चे दो बार दिन च गल करते करते हैं।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर आपका।
3: योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
2: योगेश जी बताएं, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: देशभक्ति गीत सुनवा देंगे भैया।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
3: धन्यवाद।
2: रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद आपको।

0: शहर की धुन,
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
2: 89.6 पे
1: रेडियो डीएस,
0: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: प्रसाद है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: Bachpan Public Secondary School, Gangapur City.
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियाँ जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। पीएस प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: नमस्ते, नाम बताए सर।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू से रहते हैं।
1: तुलसीराम जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया, और आनंद बख्शी साहब की आवाज में है वो गाना।

0: मनोरंजन का सरताज
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM। हेलो
2: गुड मॉर्निंग सर।
3: गुड मॉर्निंग।
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
4: हाँ जी, नाम

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताइए सर।
3: पूजा।
2: पूजा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: धौलपुर से।
2: धौलपुर से, बताए पूजा जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: मैंने पायल है छलकाई।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश के तहत। धन्यवाद।

0: लिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: गुलशन।
1: गुलशन कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: भोली सी सूरत आंखों में मस्ती।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो,
2: नमस्ते सर।
1: जी नमस्ते, क्या नाम है?
2: शिवम।
1: शिवम कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: बैरा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करता हूँ।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी
2: जी, नाम बताएं सर।
1: मोहसिन खान।
2: मोहसिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो लिए से?
1: शाम है तुम्हारा दुआ।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करता हूँ।

0: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
1: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाका।
2: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

खानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

साथी हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक पूछ।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

0: हेलो
1: सर।
0: जी, नाम बताएं सर।
1: गौरव
0: गौरव जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गुरु से इतना है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करते हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: लव कुछ जानवर गंगापुर सिटी से संजय कराने मैं सॉन्ग एक निगाह में क्या ले गया कोई।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ सर, नाम बताएं।
2: देवांश गुजर।
1: गुजर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: लालपुर उमरी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: सर मासूम शर्मा का एक सॉन्ग है, किसी के निगाह टाइम पे किसी के निगाह यार पे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: आरती मीना।
1: मीना जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: हम मर जाएंगे अरिजीत सिंह का।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: रोहित मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर।
0: गाना बताएं।
1: असला।
0: ठीक है,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
2: अरुण।
1: कहाँ से?
2: गंगापुर।
1: गाना बताएं।
2: आए मेरी मोटा वाला गान लगा देना।
1: ठीक है सर।
3: छोटे प्यार हो गया यार,
4: मन भी हो गया भाई,
3: एक दूसरे बीच में नहीं आना है।
4: किस्मत अपनी अपनी।

0: किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, उकी बहु किसे था पटा कोना, जिसका बलमा पावरफुल है। चले मोटो
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियाँ जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
6: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
7: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
8: हेलो,
9: नाम बताएं सर।
8: अरुण।
9: कहाँ से?
8: गंगापुर।
9: गाना बताएं।
8: आए मेरी मोटा वाला गाना लगा देना।
9: ठीक है सर। हेलो।
10: हेलो
9: जी, नाम बताएं सर।
10: आलोक।
9: आलोक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
10: गंगापुर सिटी से।
9: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
10: अजय उड्डा का लगा देना, कोई भी।
9: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: 9.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: हेलो, हेलो,
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं।
3: योगेश टाटू।
2: योगेश टाटू कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: सर रूट।
2: रूट सॉन्ग?
3: हाँ सर,
2: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।
3: Thank you.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
2: जी सर, बीमारी से चौधरी निवेदन कर रहा
1: हूँ। चौधरी जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: आज सर, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है
1: जी,
2: तो संसार के सारे युवकों को मैं हैप्पी लाइफ का सरप्राइज देना चाहूँगा
1: जी,
2: और उनके लिए ये मेरा गाना है।
1: बताएं सर।
2: इसे देख मेरा दिल धड़का।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का, बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: नाम बताएं।
2: सनाज।
1: सनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: संजय कॉलोनी।
1: बताएं सनाज जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: Unleash the Beat with Lance। वो बेदर्द दिया।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सनाज जी, आपकी फरमाइश के सॉन्ग।
2: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो जी, नाम बताएं सर।
2: सत्यनारायण गुप्ता।
1: सत्यनारायण जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
2: गंगा पक्षी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: पड़ोसन मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से। रेडियो डीएस में खुल के धन्यवाद।

0: कहीं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हेलो
3: डीएस रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
2: यस सर, नाम बताएं आपका।
3: हाँ सर जी, मीना सर जी, प्यार अते सत्कार परी सत श्री अकाल जी, प्रवान करो जी, मट्टू फैमिली मोड़ बोलो जी।
2: सत श्री अकाल मट्टू जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक हाँ जी, राहुल जी मैं पीछे भी देता हूँ जी, तुम तो जानते हो जी, श्रोते वीरा को देता हूँ।
2: हाँ जी
3: मैं जी पिंड मोड़ को बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोल रहे सर जी।
2: जगजीत जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज रेडियो डीएस से?
3: हाँ जी, पहले जी अपने पार्क बेटा को भी सत श्री अकाल बुलाना जी हमारी फैमिली की तरफ।
2: जी बिल्कुल सर।
3: सर जी एक फिल्म है जी, उसके मैं बोर्ड बता देता हूँ जी, फिल्म का नाम तो सोनू पता जी, हम भूल जाते हैं
2: जी। जी बताएं।
3: रिम थिम बरसता सावन होगा, ये ही लगा
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
3: सर जी आज मेरे यार दोस्त प्रगट सिंह ढिल्लों आए जी अपने रेडियो ते, ठीक है ना जी?
2: जी आपके दोस्तों के भी कॉल आए सर, अभी चल रहा है उनकी फरमाइश।
3: ठीक है, चंगा सर जी मैं सुनता हूँ जी। सत श्री अकाल।

0: experience and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
6: ₹89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो, काम बताएं सर।
3: सर सूरज मीना।
2: सूरज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: करौली।
2: हेलो,
3: करौली से सर।
2: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना है?
3: अब्बास।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे सॉन्ग। हेलो
3: हेलो,
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
3: रसूल खान।
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
3: रसूल खान।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: एक बार चले आओ लता मंगेशकर की आवाज़।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास. बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन. नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन. द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी. रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट. लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग.
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी.
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके.
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान.
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल.
5: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण. डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन. आज ही एडमिशन कराएं. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500. प्रवेश प्रक्रिया आरंभ. सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए.
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे.
6: और दोस्तों, हेलो फरमाइश, इस कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं और थोड़ी देर में लेकर आते हैं आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम नए तराने. कीजिए थोड़ा सा इंतजार.

दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम और अब सुनेंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं, आपकी इंतजार की घड़ी को ख़त्म करते हैं, लेकर चलते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने की ओर। नए तराने कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ नए नए गाने और साथ में सामान्य और विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ।

0: कभी सोचा है, माँ के पेट में बच्चा पूरी तरह पानी में डूबा होता है, फिर भी वो जिंदा कैसे रह पाता है? क्योंकि अगर कोई इंसान पानी में डूब जाए तो कुछ ही सेकंड्स में उसका दम घुटने लगेगा, तो फिर एक अजन्मा बच्चा पूरे 9 महीने तक माँ के पेट में पानी के अंदर रहकर भी जिंदा कैसे रहता है? सच्चाई आपकी सोच से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल माँ के गर्भ में बच्चा जिस लिक्विड के अंदर रहता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड बच्चे को चोट से बचाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और उसके शरीर को सेफली ग्रो होने देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि माँ के पेट में बच्चा असल में सांस लेता ही नहीं। जी हाँ, उसके लंग्स उस समय लगभग इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो अपने फेफड़ों से हवा अंदर खींचकर जिंदा नहीं रहता। तो फिर ऑक्सीजन आती कहाँ से है? असल में बच्चे की पूरी जिंदगी एक अद्भुत बायोलॉजिकल सिस्टम पर टिकी होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बच्चे को सीधे उसकी माँ के शरीर से जोड़कर रखता है। जब माँ सांस लेती है तो ऑक्सीजन उसके ब्लड में मिल जाती है और फिर वही ऑक्सीजन अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल के जरिए सीधे बच्चे तक पहुंचती रहती है। मतलब बच्चा खुद सांस नहीं ले रहा होता बल्कि उसकी माँ उसके लिए सांस ले रही होती है। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात, क्योंकि बच्चे के लंग्स काम नहीं कर रहे होते इसलिए उसके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं होता। उसके दिल के अंदर कुछ स्पेशल टेम्परेरी पाथवेज होते हैं जो ब्लड को लंग्स की तरफ जाने से रोकते हैं। मतलब उसका शरीर पहले से जानता है कि अभी लंग्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट ये है कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसका शरीर अचानक बदलना शुरू कर देता है और जैसे ही वो पहली बार बाहर की हवा अंदर खींचता है उसके लंग्स फैल जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी एक नए लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर स्विच हो जाती है और उसी मोमेंट दुनिया पहली बार उसकी रोने की आवाज सुनती है।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस।

सुन बेबी मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, तभी फ्लोर पे तेरी वेट में हूँ खड़ा। ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के वखा।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

आसमान देखो सज गई है ये सरजमीन, हुस्न तेरा काबिल तारीफ, जन्नत से कम नहीं। हसरत है तेरी जैसे साथ से ही तुझसे हो, बेकाबू दिल बेताब की बस गई हर धड़कन में ही। हाथ फूल है

और दोस्तों इसी गाने के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपका नए तराने थोड़ी देर में लेकर चलते हैं आपको भूली बिसरी यादें कार्यक्रम में।

शमा बनकर जल रहे हैं हमारी धड़कनों में तुम्हारी मोहब्बत के परवाने। तुम जब हमें उन नजरों से देखते हो, दिल की कलम से हम लिखने लग जाते हैं आशिकी के कई अफसाने।

0: दोस्तों अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम। दोस्तों अभी फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहेंगे आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का। मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: जी नाम बताएं। कोमल
0: कोमल,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: तेरे
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: इश्क की दीवानगी सर चढ़ के बोलो।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का गाना। हेलो, हाँ

0: गुड आफ्टरनून
1: नाम बताएं
0: सर। सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हैं।
1: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर बरसात में गाना सुनना चाहेंगे, ईसा जन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का गाना।

0: नाम बताएं सर।
1: हाँ सर, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ। आवेदी जी
0: चौधरी जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना है सर, सात सहेलियाँ खड़ी खड़ी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर। नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: हेलो ऋषि जी, सादर नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नाम बताएं आपका।
0: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। ऋषि जी, आप कैसे हैं? काफी देर बाद आपसे मौका मिला।
1: बिल्कुल सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं और सदैव स्वस्थ मस्त रहता हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, बस इंतजार कर रहा था कि रेडियो डीएस प्रारंभ हो जाए और हम अपनी पसंद के गाने सुन सकें।
1: बिल्कुल। अब सर, अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपको प्रसारण सुनने में।
0: जी, बहुत अच्छी आवाज रहती है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत मजा आ रहा है।
1: बिल्कुल बताएं सर, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: सनम मेरे सनम, कसम तेरी कसम, फिल्म का नाम सनम, ये प्यारा सा गीत सुना दीजिए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डिश में खुल किया।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का अगला कार्यक्रम रहेगा फिल्म संगीत।

0: 89.6
1: DSFM सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हाँ जी मैम।
3: ओए छोटू की कह रही थी तू ऑस्ट्रेलिया चला गया।
2: हाँ जी मैम।
4: सरप्राइज चॉकलेट
2: सरप्राइज।

जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, आज तो बाद तेनू कदे चेहरा दिखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं, गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।

0: एक चीज दिखावा
1: मेरे लिए?
0: हाँ चल अखा बंद कर। ए मैं दूसरी औरत दे अपनी जिंदगी चलाया।
1: दूसरी?
0: हाँ
1: ते पहली कौन सी?
0: मेरी बेबे।